0: जिनको नजर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे जाई पे रखे आप ते सच जंती उपाय कै देखे था पी था किसनु कहिया नानका सब किछ आपे आप पौड़ी बड़े के बड़े आई।

हे गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कहो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवे चेत आवण।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख भीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कह जह कोट इंद्र इंद्राण साह साहाण गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत प्रभ दातौ दातार पर्यौ जाचक इक सरना मिलै दान संतरीन जिह

बिनत करो अरदास, सुनहो जी ठाकुर पावे। देहो दरस मन चाओ, भगत एहो मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार मह, सब काल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सतगुर खीमा ताणिया, जुग जूथ समाणे। अनभौ ने जा नाम टीक, जित भगत अगाणे। गुर नानक अंगद अमर, भगत हर संग समाणे। इहो राज जोग गुर रामदास, तुम हो रस जाने। गुर मेल गुर सिख संध पहे, ब्रह्मासन विश्राम। राम नाम गुरमुख पहे, गुरमुख रमता राम। गुरमुख रमता राम, नाम गुरमुख प्रगटायो। सबद सुरत गुर ज्ञान,

दीप जोत जग मग अंतर उर गुरमुख रमता राम संद गुरमुख मेल पहे गुर सो कहाओ टल गुर सेविया अहनेस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जिस पास

गए मसकत काल, नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अपना आप जर सर्वकला प्रभूर दिसै जत कथा नानक दा सुंदा तुदे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता धरत महत

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत खा। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया।

अब कहा करोगे ऐसे वह मीन पकड़ फंके और काटे रांद कियो बहबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसर

भगत नहीं संताप कह रविदास भगत एक भड्डी अब ये कासो कहिया जा कारण हम तुम आराद सो दुख आज हो सहिया कह रविदास भगत एक भड्डी अब ये कासे ओ कहिया जा कारण हम तुम आराद सो दुख आज हो सहिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वरा आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वरा सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वछल अनाथ नाथे सरण नानक पुरखे चुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरणाई चाओ गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एकाल बलाई राम राख लिए तिन रखन हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होए बिचारो तित कर गावहु सोहिला सिमरे हो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरभउ का सोहिला हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े संभालियन देख गादे बनहार तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिल कर पावह तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर कर यहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देहयावन राग आसा महला पहला शकार शह गुर शह उपदेस गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहा विसोए चसिया घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल हो राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल अनलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति
कैसी आरती होए भव खंडन तेरी आरती अनहता शब्द वजंत फेरी रहाओ सह सताव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नन एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सह स्तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए ते सदै चानण सब मह चानण होए गोर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हौ में कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुभ है दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहां खाट चलो हर लाह अगै बसन सोहेला औद कट दिन सरणारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तन जानी जा कौ आए सोई बेहज हो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पावहु सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोकौ कर संतन की तोरे अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोकौ कर संतन की तोरे।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दू गवायो, जो चाहत सो ही मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पा।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੇ।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।